0: देखो ये परियों की टोली, मीठी मीठी जिनकी बोली, क्या क्या दिल पर रंग जमाए, गलबों की ये आदमी चली। देखो ये परियों की टोली, मीठी मीठी जिनकी बोली,
1: ऐसा मौका फिर

आशिक निराले ढूंढो यहाँ तुम भी साथी मिल जाएंगे हुस्न वाले ऐसा मौका भी।

मन भर लो, मर जाओगे प्यार कर लो। कल का सपना किसने देखा, इन राहों से आज गुजर लो। अपने दिल का दामन भर लो, मर जाओगे प्यार कर लो। कहाँ मिलेगा हमारे जैसा दिल कहाँ।